0: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
1: FM247365
2: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
1: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: looking like a star.
1: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
3: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500.
4: अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात.
5: इंट्रासिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
1: This program is brought to you by.
4: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
1: And
6: तूफान है, हर जीत की पहचान है.
1: And
7: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
1: And
8: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
1: And
9: Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with yogurt and egg. 100% aage badho bina ruke.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: This program is brought to you by.
0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
2: And
3: तूफान है, हर जीत की पहचान है।
2: And
4: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
2: And
5: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
2: And
6: Lifebuoy anti-dandruff shampoo with yogurt and egg 100% aage badho bina ruke.
7: Tezi se phailti digital duniya ek zabardast salahiyat ke sath sath ek aham zimmedari bhi. Mazhabi firqa varana ya nasli buniyad par nafrat angezi, dehshatgardi ki targhib se mutalliq kisi bhi tarah ka mawad phailana, electronic jalsazi, spamming, dhoka dehi, bashmool identity theft, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है, अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
9: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा, तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अजमे इस्तेहकाम मुस्तहकम पाकिस्तान।
8: मुफाद आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
10: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
11: सामने अपने आप को से 3 बार मौत देखो।
12: टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूं, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
13: फिर उन्होंने साडी वीडियो बनाई, सानू मारिया, सानू कुटिया।
10: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
14: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
10: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खसूसी टास्क फोर्स का क्याम, मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जराए इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100
2: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
15: 365.
16: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
17: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं.
16: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता.
18: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ.
17: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं. सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या.
16: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं.
18: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी.
17: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते.
18: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
16: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
17: और इस वजन की असल हकीकत को समझे.
16: आइए वेट से आगे का सोचें.
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.

0: बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले, प्लेटिनियम स्टेटस मेंटेन करे और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्रास्ट सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
3: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले, प्लेटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
3: एक दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
1: इंट्रास्ट सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
4: This program is brought to you by.
0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले।
4: And
5: तूफान है, हर जीत की पहचान है।
4: And
6: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
4: And
7: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
4: And
8: Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with Yogurt and Egg. 100% aage badho, bina ruke.
4: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
9: FM247365.
10: Let's celebrate
4: 31 years of memory. Milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
10: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: स्टेटस मेंटेन करें और पांच फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।

0: location for maximum music.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: This program is brought to you by...
4: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
3: एंड
5: तूफान है, हर जीत की पहचान है।
3: एंड
6: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
3: एंड
7: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
3: And
2: Life Boy Anti Dandruff Shampoo with Yogurt and Egg. 100% aage badho bina ruke.
3: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

अब सुन मुझको, पास आके बैठ के चेक कर फ्लो, पूरी है तो रेस एटीट्यूड अंग्रेज पर रेस, वही चीजें जो स्टेडी एंड स्लो, डैम डैम दिल धड़के डर डर के, किचन में क्यों करता है आह सुन के

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: This program is brought to you by.
0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
2: एंड
3: तूफान है, हर जीत की पहचान है।
2: एंड
4: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
2: एंड
5: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
2: And
6: Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with yogurt and egg. 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
7: ख्वातीनों हजरात, मंशियात वो जहर कातिल है जिसकी संजीदगी का एहसास इंसान को तब होता है जबकि जहर हमारी रगों में साइद कर चुका होता है। वक्ती सुरूर और मजे का लिबादा ओढ़े ये लानत गैर महसूस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को अपने शिकंजे में ले रही है। मंशियात की लानत में गिरफ्तार होने की एक बड़ी वजह बुरी सोहबत है जिसको अमूमी तौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं जबकि दरअसल इस अमल का ताना बाना बुरी सोहबत और मेल जोल से जाके जुड़ता है। घर देर से लौटना, वालदेन और घर वालों से नजरें चुराना, खानदान और अहबाब की महफिलों से गुरेज करना, गैर मामूली अखराजात में इजाफा, ये सब इसकी बड़ी अलामत है। खुदा रा अपने बच्चों पे नजरें रखे ताकि वो ताहयात आपकी नजरों के सामने रह सके। हमारा आज़म एक कौम, एक मंजिल और मंशियात से पाक पाकिस्तान।
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: FM 100 Like us on facebook.com/fm247365
3: FM 247365। कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2025 के मुताबिक दुनिया भर में 31 करोड़ 60 लाख से ज्यादा अफराद मंशियात इस्तेमाल करते हैं, जबकि तकरीबन 6 करोड़ 40 लाख अफराद मंशियात के बायस सेहत और जिंदगी के संगीन मिसाइल का सामना कर रहे हैं। ये आदादोशुमार मंशियात के बढ़ते और इंतहाई तेजी से बदलते रुझान के पेश नजर पैदा होने वाले पेचीदा मिसाइल से आगाह करते हैं। पाकिस्तान भी इस आलमी चैलेंज से महफूज नहीं। 2013 के कौमी सर्वे बराए मंशियात के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 67 लाख अफराद मंशियात के इस्तेमाल के शिकार हैं। पाकिस्तान की तकरीबन 68% आबादी 30 साल से कम उम्र, जबकि 27% 15 साल से कम उम्र है। यही नौजवान आज एक फैसला कुन मुकाम पर खड़े हैं, जहां वो मंशियात के खतरात का सामना भी कर रहे हैं और एक रोशन मुस्तकबिल, रोशन महफूज और तरक्याती याफ्ता पाकिस्तान की उम्मीद भी है। ये सिर्फ आदाद नहीं बल्कि जिंदगियां, खानदान और मुस्तकबिल हैं, जिन्हें महफूज रखना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इस जंग में सबसे मुअसर हथियार आगाही है। वालदैन, असातिज़ा, मीडिया, तबकात और नौजवान, हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि आने वाली नस्लों को मंशियात के खतरात से महफूज रखें। आज इंसदाद मंशियात के आलमी दिन के मौके पर आए हम सब मिलकर अहद करें कि हम आगाही को अमल में बदलेंगे, उम्मीद को ताकत बनाएंगे और मिलकर एक मंशियात से पाक पाकिस्तान की तामीर करेंगे। आपका एक फैसला जिंदगी बना सकता है और एक नशा सब कुछ मिटा सकता है। फ्यूचर की रेस में नशा शॉर्टकट नहीं, डेड एंड है। 26 जून सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि याद दहानी है कि जिंदगियां कैसे बचाई जा सकती हैं। एक कौम, एक मंजिल, मंशियात से पाक पाकिस्तान।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: निदाना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब पार्लर से 100% खुशकी जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: FM 247 365 FM 247 365

0: 10:45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं। ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं, सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्रा वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं। शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राबता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं। याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा। लॉग इन होने के बाद बाएं जानिब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें। इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें। अगर आपकी शिकायत किसी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से मुतालिक है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास वो शिकायत नंबर मौजूद हो जो आपको ऑपरेटर के पास शिकायत दर्ज कराते वक्त फराहम किया गया था, क्योंकि पीटीए के पास शिकायत के अंदराज के लिए ये नंबर देना जरूरी होता है। अब कंप्लेंट नंबर दर्ज करें और कंप्लेंट समरी में अपनी शिकायत की तफसील लिखें। जरूरत के तहत मुतल्लिका फाइल भी मुंसलिक की जा सकती है। इसके बाद कवायद और जवाबित कबूल करते हुए अपनी शिकायत बाकायदा तौर पर सबमिट कर दें। शिकायत सबमिट होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मौसूल होगा, जिसके जरिए आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी मालूम कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए पीटीए के टोल फ्री नंबर 0800 55 055 पर राब्ता करें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
5: Back to back. Only music, no RJ talk.
6: Only music, no RJ talk.
5: This is FM 100.
7: Come on.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तना जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज़ इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: FM 247 365 FM 247 365

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: Hey, duni do do duni cha, sahi intikhab ke inamat dhai hazaar.
2: Agar aap hain drive car, bike ya rickshaw driver, to 4 mai se 12 julai tak weekly challenges mein hissa le. Platinum status maintain kare aur pay fair earnings ke saath 2500 se zyada inamat.
1: Hey, duni do do duni cha, duni do do duni cha.
3: इंट्रासिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
4: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
5: facebook.com/fm247365
6: FM 100.
7: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
6: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.

0: बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्रासिफ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: नशा न परेशानियाँ खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। मातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: हेलो एवरीबॉडी, सो वी आर बैक अगेन और आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम कुकिंग स्पेशल विद मी फातिमा खान एंड वी हैव कुकिंग एक्सपर्ट हुदा आफ्ताब। तो बात यह है कि जी वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तेजी से वक्त गुजर रहा है और हुदा आफ्ताब के साथ ही बड़ा अच्छा हमारा वक्त गुजरता है फ्राइडेज और सैटरडेज को 12 से 1 के दरमियान, जिस दौरान हम जो है वो कुकिंग की तो बातें करते ही हैं, ऑब्वियसली आप लोगों से रेसिपीज शेयर कर रहे होते हैं टिप्स, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, हाल अहवाल जान रहे हैं, क्या ताजा तरीन सूरत हाल चल रही है और क्या चीजें ट्रेंड करी, हम ऑलमोस्ट हर ये टॉपिक पर ऑलमोस्ट बात कर रहे होते हैं। रिदा, अभी ट्रेंडिंग चीजों के बारे में बात की जाए तो आजकल ये जो कोरियन चीजें हैं सॉरी ये स्पाइसी खाने और ये रेमन और ये, आपने इसमें से कुछ ट्राई किया, कुछ पसंद आया आपको?
1: नहीं, मैं इन तरह की चीजें नहीं खाती हूँ, लेकिन मेरे घर में भी एक फर्द ऐसा है जो इन चीजों का बहुत शौकीन है, दुआ
0: हाँ।
1: वो बस मंगवाती सीसी कर रही होती है और खा रही होती है, तो मैं कहती हूँ पता नहीं क्यों उसको ये है, मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाती ना, मुझे वैसे भी ये ज्यादा इस तरह के खाने नहीं पसंद है, मुझे देसी अपने खाने ज्यादा हाँ। अच्छे लगते हैं, देसी चीजें ज्यादा अच्छी।
0: नहीं, बात ये सही है रदा कि इतनी तकलीफ का शिकार हो रहे हैं और वो फिर भी खा रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अभी आजकल तो बस हर जानब कोरियन चीजों ही ट्रेंड कर रही हैं कराची में, और कोरियन के साथ साथ एक ये भी चीज है कि अब हर चीज में चीज डाल दी है।
1: हाँ, चीज मैंने देखा हर चीज में वो लोग चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, बस अब लोगों का है वो। मैं कह रही उस दिन मुझसे पता नहीं किसी ने कोई बात की तो मैंने कहा देखें अभी जब से ये सोशल मीडिया का हुआ है लोगों ने इतनी चीजों को का बस क्या क्या बेड़ा कर रखा
0: है, हकीकत है।
1: अब वो जो याद है आपको पहले वो चल रहा था ब्रेड के स्लाइसिस के ऊपर चाय पूरी डाल,
0: मुझे तो बड़ा गंदा लगा था
1: वो करके, फिर उसके बाद अब गुलाब जामुन की एक अलग वो है टेस्ट है, गुलाब जामुन एक अलग मिठाई है, अब गुलाब जामुन खीर बन रही है, गुलाब जामुन
0: केक बन रहे
1: हैं, रसमलाई केक बन रहे हैं, तो ये सारी चीजें लोगों ने चेंज करके, और हम अगर टीवी पे कोई बना दे तो उसके पीछे तो इतने
0: बिल्कुल सही कह रही हैं,
1: और ये सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी चीजें चल रही हैं, हलीम और बिरयानी है, नली बिरयानी के ऊपर पता नहीं क्या है, तो ये सारी चीजें जैसे लाहौर की बात की कि वो हलीम और पुलाव वो जीरे वाला, तो बस लोगों ने अपने
0: अपने अपने तौर पे चीजों को नहीं अच्छा कि मेरा मानना यह है कि जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उन्हें बिल्कुल वैसी रहने देना चाहिए, जैसे कि कढ़ाई एक कढ़ाई है उसमें आपने चीज डाल दी तो ऑलिव्स डाल दी तो वो मजा ही नहीं देगी, क्योंकि ये जो हमारी ट्रेडिशनल डिशेज है ना इस पे तो बिल्कुल मैं कहती हूँ कि कुछ नहीं करना चाहिए। शायद आपने अपने सोशल मीडिया पर देखी हूँ पड़ोसी वाले की बहुत सी वीडियोज आती है तो फेंटा मतलब ड्रिंक्स डाल के जो है वो नूडल्स बनाए जा रहे हैं, क्या हो रहा है?
1: सही कह रहे हैं, बिल्कुल ब्लैक वाली उसमें सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर भी मैंने देखा है, ऑरेंज वाली में भी देखा है, इसी तरह से ये लोग कर रहे होते हैं, तो वो खाने का पता नहीं, अब वो सोशल वो हमारे देखने वाले भी एकदम से मिलियंस उस पर व्यूज बढ़ देते हैं,
0: तजस्सुस हो रहा है कि हो क्या रहा है, लेकिन वाकई में भाई कुछ चीजें हैं जो आपकी फॉर एवर ट्रेंडिंग है, वैसी है तो उन्हें वैसे रहने देना ही ठीक रहेगा। खैर भाई, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, आजकल हम जो है वो सोशल मीडिया एडिक्शन के शिकार हैं, सोशल मीडिया ना देखें तो सुकून नहीं मिलता। चलिए, तो आप मोबाइल देखते?
1: मैं देखती हूँ, बिल्कुल देखती हूँ।
0: कितना देखती है, मतलब रात में सुकून से?
1: अरे वो होता ये है कि इतनी बुरी इसकी आदत है ना, जो आप एक दफा जब खोल के बैठ जाओ ना, फिर बस उसी पे देखते जाते हैं, अब ये रेसिपी है, अब ये आया, ये फलानी है, ये देखते देखते टाइम वेस्ट होता है। अब मैंने पता क्या सोचा है, मैं अब क्या करती जब अपने सब कामों से फारिग हो जाती ना, फिर मैं कहती अब इसको हाथ लगाऊंगी वरना मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, अगर इसको मैंने हाथ लगा लिया तो फिर मेरा टाइम सारा वेस्ट हो जाएगा। तो ये बस मसला है कि अगर आप पहले सोचे कि हमने अगर इसके पास ही सारा टाइम गुजरना है तो आप सारे काम भूल जाए, अगर आपने घर के बाकी काम करने या कोई और काम करने हैं तो फिर ये कि आप पहले उसको रेस्ट दे मोबाइल को,
0: ये बात सही है,
1: फिर आप अपने सारे काम से फ्री होकर सुकून में बैठ जाए, टेंशन नहीं हो फिर आपको।
0: अच्छा, ये जो बेचारी अम्मियां है ना मासूम, ये लोग रात में ही सोते वक्त अपने मोबाइल को देख रही होती हैं, और जो आप भी यही करती हैं हमारी अम्मी की तरह, मतलब अक्सर यूट्यूब की गलत खबरों को हकीकत समझ बैठती
1: हैं। कई दफा मेरे अम्मी कहती है, मैंने कहा जीरक ये हो गया मानो, ये इसका अम्मी ये नहीं है, ये फेक है, ऐसी होता है, आप क्यों इसपे,
0: इसके बच्चे हो गए, ये हो गया, वो हो गया, उसने ये कह दिया, अल्लाह
1: बच्चे भी ये
0: गया। हमारी अम्माओं की वजह से जो लोग इतने मिलियन व्यूज कमा रहे हैं ना, उसमें यही लोग हैं।
1: हम सीधे साधे लोग हैं, वो पीटीसीएल वाले जमाने में लोग हैं, हम सीधे साधे लोग हैं, हमें तो इतना नहीं है पता, लेकिन ये बच्चे वाकई माशाल्लाह हमारे बहुत होशियार है, और मैं भी कई दफा कहती हूँ हाँ इसकी ये खबर हो गया, اور وہ کہتے ہیں نہیں نہیں امی یہ سب فیک ہے, ایسا ہی ہوتا ہے, آپ خام خاص چیزوں پہ نہیں جایا کریں.
0: اور بڑا ٹائم لگتا ہے اپنی اماؤں کو سمجھانے میں کہ حقیقتاً طور پر یہ چیز غلط ہے, لیکن وہ نہ مان رہی ہوتی نہیں نہیں یہ سچ ہے یہی ہے.
1: کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ غصہ چڑھتا ہے امی آپ تو بس یہ,
0: ہاں امی آپ کو نہیں پتا. پھر اچھا اس پہ بھی آپ کو یہ ڈانٹ سننے کو ملتی ہے کہ ہاں سب تمہیں پتا ہے ہمیں تو کچھ نہیں پتا. نہیں آبویسلی دیکھیں ہمارے والدین سے زیادہ تجربہ ہمارے پاس آبویسلی نہیں ہے, نہ زیادہ معلومات ہے, لیکن کچھ چیزیں اور یہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے والدین کی بڑی معصومیت ہے, یہ ان کا بھول پن ہے کہ انہیں نہیں پتا بہت ساری چیزیں.
1: اتنا غصہ آتا ہے میں سناتی, میں کہتی اتنا تم لوگوں کو پڑھنے سے بہتر تھا میں خود ہی پڑھ جاتی, میں خود ہی اتنا کر لیتی تو اچھا تھا, تم لوگوں کو تو اتنا پڑھا کے میں نے ایسے یہ کیا وہ کیا, میں پھر ان کو خوب مطلب
0: یہ بالکل ایسا ہی ہوتا.
1: بس امی ہماری تو یہی, امی تو وہ ہے, امی وہ, آپ یہ کر لیں, آپ فلانی ڈاؤن لوڈ کر لیں, یہ کر لیں. میں نے کہا اس کو بھی تو سمجھنے کے لیے ٹائم چاہیے, وہ بھی تو نہیں سمجھ
0: آئی. وہ پھر اتنی ساری ایپس جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ ہوئی ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ کسی نے کہا کہ آپ یہ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں تو یہ ہوگا
1: کہ فاطمہ بھی موبائل سے نکال رہی ہوتی ہے.
0: میں یہ ردا کی جو چیزیں دیکھتی ہوں مجھے مما یاد آ جائے, سیم ٹو سیم ہیں دونوں, وہی چیزیں دونوں نے کرنی ہیں. اتنی آپ کی موبائل میں ایپس ہیں وہ ایسی اس میں آ رہا تھا کہ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو یہ ہو جائے گا تو میں نے بھی کر لیا.
1: میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے, یہ آتی کوئی فاطمہ کا ہی ڈیلیٹ کر رہی ہوتی ہے, بچے تو ہاتھ آتے نہیں ابھی میرے دونوں تینوں, بلکہ وہ تو ہاتھ آتے نہیں, وہ کہتے ہیں امی بس یہ. میں پھر غصے میں ان کو کہتی ہاں تم لوگوں کو اتنا پڑھایا لکھایا نہیں پڑھاتی, اس سے بہتر تو میں خود ہی اتنا پڑھ لیتی جو آج یہ ساری چیزوں کو سمجھتی.
0: صحیح بات ہے بھائی, غصہ تو آ جاتا ہے, پھر بھائی اماں ابا کا غصہ تو جائز ہے نا, اس غصے کے بغیر تو مجھے لگتا ہے کہ زندگی چلتی ہی نہیں ہے. تو یہ بڑا زندگی کا بڑا خوبصورت حصہ ہے کہ آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہیں, ان کی ڈانٹ, ان کا غصہ, ان کا یہ پیار, یہ سب جو ہے نا وہ ہماری زندگی کو میں کہتی ہوں مزید خوبصورت بناتا ہے, آپ کو ہر پل ہر دم کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے. اللہ پاک ہمارے والدین کو ہمیشہ سلامت رکھے, آمین سم آمین. رضا آفتاب آپ ہمیشہ خوش رہیں اور ایسی ہستی مسکراتی رہیں ہمارے ساتھ اس اچھے اخلاق کے ساتھ, یہ بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ وقت بھی ختم ہو چکا ہے.
1: چلیں جی, آج کچھ ہم لوگوں نے اپنی باتیں بھی شیئر کی اور یقیناً آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوں گی. اور ایک بات میں بھی کہوں گی کہ جن کے ابھی والدین ہیں تو ان کی بہت زیادہ قدر کریں.
0: بالکل
1: آپ یقین کریں, میں جب پاکستان سے, ویسے تو یاد نہیں تک آتے لیکن پاکستان سے جب باہر جاتی ہوں اتنے میرے ابو مجھے یاد آتے ہیں, اتنے یاد آتے ہیں, ہر لمحے وہ بہت یاد آتے ہیں.
0: ایسا ہی ہے,
1: تو بس یہ کہ ان کی قدر کریں, بےچارے کچھ بولتے بھی ہیں سنیں یہاں سے. اب ہمیں یہ ساری چیزیں فیل ہوتی نا, اللہ دیکھ ابو یہ کہہ رہے ہیں,
0: ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے.
1: چلیں بہت شکریہ آپ لوگوں کا, کال کا, ایس ایم ایس کا. انشاءاللہ تعالی کمنگ پھر ملاقات ہوگی فرائیڈے یا سیٹرڈے کو, اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.
0: پاکستان زندہ باد.
2: ایف ایم 100 ٹائم چیک, اٹس 1 PM. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Malta, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
3: Assalamu alaikum Pakistan.
4: آزان ظہر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: This is the Lunchtime Special, only on FM 100.
1: Don't miss out.
2: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the Lunchtime Special with the one and only Fatima Khan.
1: Join Fatima Khan.
2: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
1: Midday break a blast.
3: Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum everyone. This is me, Fatima Khan, and aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. How are you all? Kya haal hai aap sabke? Kaisa guzar raha hai din? Kya kar liya hai? Kya karne wale hain? To ji, as usually hungi aap se khoob sari baatein, share karenge kuch information aur saath hi saath program mein hoga bahut sara music. तो कैसे हैं भाई मेरे तमाम सुनने वाले, क्या हाल हवाल हैं आपके? जल्दी जल्दी हमें मैसेज करें, अपनी अपनी हाजिरी लगाएं, हमें बताएं किस वक्त आप हमें कहां से सुन रहे हैं. आज सैटरडे का दिन है, यानी कि लिसनर्स का दिन है, तो जल्दी से मैसेज करें और बन जाएं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा. सबसे पहले करते हैं प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज एक अदद म्यूजिकल ट्रैक के साथ, क्योंकि भाई आगाज तो जरूरी है. तो जल्दी से करते हैं आगाज, फिर वापस आकर आपसे शेयर करेंगे तरीका कार कि कैसे आप भी बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा.

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशिश।

आंखें मिलाने वाले नाज़िर हसन की आवाज आप लोग सुन रहे थे। नाज़िर हसन जो हैं वो मेरी बड़ी ही फेवरेट सिंगर हैं और ये मेरे ख्याल से सभी की फेवरेट सिंगर होंगी। एवरीबडी लव्स हर सो मच बिकॉज इनके गानों का ना एक अलग ही स्टाइल है, जब भी सुनो बड़ा मजा आता है, एक आप इंजॉय करते हैं इनके गानों को। और मैं अभी तकरीबन कोई 6-8 महीने से बहुत ज्यादा इनको और पसंद करने लगी क्योंकि रियली लाइक हर सॉन्ग्स। और इनके भी गाने ऐसे हैं कि शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कहा हो कि हमने नहीं सुने। अच्छा भाई, हमें मैसेज करती हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम लवली आरजे, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम माय लवली लिसनर, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप बताएं। कहती हैं आज लंच में निहारी है, दैट्स ग्रेट। उसी के साथ साथ आपके एक और मैसेज आया, कहते हैं आप भी आप तो हमसे सवाल पूछती हैं, आज क्या हम आपसे सवाल पूछें? ओ माय गॉड, ये बात सुनने के बाद मुझे याद आ गया, कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पर एक ट्रेंड चला था आस्क मी अ क्वेश्चन, जो कि बहुत टाइम तक लोगों ने उसे अपने स्टोरी स्टेटस पे लगाया था कि जी आप हमसे जो है वो सवाल पूछें, हम आपको जवाब देंगे। तो ये सवाल सुनने के बाद मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है, बिल्कुल आप पूछें, आपको क्या सवाल पूछना है मुझसे, बिल्कुल हम ही देंगे आपको आपके किए गए सवाल का जवाब। तो आज हम क्या लिसनर्स से ये कहें कि आस्क मी अ क्वेश्चन, यानी कि आज आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं तो पूछें भाई। कोई सवाल है आपके जहन में सो यस प्लीज। लंच देखिए सब मुझसे पूछते हैं और मैं बताती हूँ उन्हें कि मेरे लंच में क्या है, और यही ताजा तरीन सूरत हाल होती है क्योंकि लंच पर जिक्र बिलखसूस किया जा रहा है, तो बिल्कुल जो पूछना है आप पूछें। अक्सर औकात वैसे अगर किसी को बात पूछनी होती है तो सबसे पहले होता है कि थाल क्या है, तुम्हारी तुम हो कैसे या कैसी हो, क्योंकि दिस इज द कंपल्सरी क्वेश्चन दैट वी यूज टू आस्क एवरी वन कि हाल हवाल कैसे हैं। और हमेशा की तरह यही मेरी दिली ख्वाहिश है कि बस सबके हाल अहवाल बिल्कुल ठीक हों, सब बेहतरीन हों, शानदार जिंदगी जी रहे हों। और सबसे बढ़कर जो जिंदगी में एक इम्पॉर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हों, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। मजीद उनके मैच जिसको भी करेंगे शामिल, लंटन एंड अनलेस सैटरडे का दिन बहुत तेज से गुजरता है, तो हम चलते हैं कहते ट्रैक की जाने और आते हैं वापस ट्रैक के बाद।

बेस्ट कि हमारा कराची जो है वो बड़ा खूबसूरत नजारे जल्द अज जल्द पेश करे, जिसके हम कराची वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कराची का जो व्यू है ना वो इतना अच्छा हो जाए कि बस सब कहें कि बस अभी भी हकीकत है कि हमारा जो कराची है वो बड़ा खूबसूरत शहर था, खूबसूरत नहीं रहा बेचारा, लेकिन ये है कि कराची की वाइब्स बिल्कुल अलग है। हर शहर की वाइब्स अलग होती हैं ऑब्वियसली, सिर्फ कराची को मैं नहीं कहूंगी, लेकिन कराची इज अ पॉपुलर सिटी, मेट्रोपोलिटन सिटी है। कराची इज अ नाइस प्लेस टू लिव ऑल्सो, बट अब तो कराची बड़ा महंगा हो चुका है, कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफी हद तक मुतासर हो चुका है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी फिलहाल हम कराची की जो है वो ताजा तरीन सूरत हाल से आपको आगाही फराहम करते हैं कि जी कराची में तेज हवाओं के झटके चल रहे हैं जिनकी रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड की जा रही है। कमजोर पुल या दरख्त से दूर रहें ताकि किसी नुकसान से बचा जा सके, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तेज हवाओं के झटके जारी रहेंगे और ये जो है आज और कल तक जो है वो मौसम ऐसे ही रहेगा, लाइक अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी। और हकीकत है कि हवाओं इतनी है क्योंकि हवाओं पर कोई जो है ना वो जोर नहीं चलता, इट्स वेरी डेंजरस। सो मेक श्योर कि आप किसी भी इस तरह की चीज के आगे ना खड़े हों। कमजोर जो है वो पोल्स हैं, दरख्त हैं, सबसे आप जो है वो दूर रहें, ये एक इम्पॉर्टेंट तरीन चीज है, इसका आपने ख्याल रखना है। क्योंकि ये अक्सर औकात हम मिस्टेकनली भी इस तरह की चीजें कर लेते हैं, हमारे जहन में नहीं होता, तो इसलिए इन चीजों को जहन में रखें और एहतियात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा भैया, आज 11 जुलाई है और आज जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। ओके, यानी कि दुनिया की आबादी, ओ माय गॉड, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और वर्ल्ड पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए ना मैं अक्सर औकात ये चीजें देख रही होती हूँ यूट्यूब वगैरह पे, बिकॉज आजकल एक ऐसा टाइम है कि हम हर चीज यूट्यूब पर जरूर देख रहे होते हैं। और एक एडिक्शन ये भी है कि किस चीज के कितने व्यूज हैं, ये चीजें ना हमें ज्यादा जो है वो उन चीजों को देखने की जानिब मधु करती हैं कि जो है वो पता चले कि कितनी अच्छी चीज है, उसको पता लगाने के लिए ना हम जरूर उसके व्यूज पर फोकस करते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि अक्सर औकात कुछ वीडियोस पे इतने व्यूज हैं कि जितनी शायद इस दुनिया की आबादी भी नहीं है। आई वॉज वेरी शॉक्ड कि ये कैसे है कि आबादी कम है और व्यूज जरा ज्यादा है। तो अब अगर ऐसे देखा जाए तो आप ये देखें कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भी मोबाइल फोन मौजूद नहीं है या उन्हें पता नहीं है, या बहुत सारे लोग अवॉइड भी करते हैं, लेकिन द थिंग इज दैट कि इतनी डिवाइसेज मौजूद हैं जो अलग अलग डिवाइसेज से अलग अलग अकाउंट के जरिए देखा जा रहा है। तो आप ये देखें कि माशाल्लाह से कितनी आबादी हो चुकी है, वसाइल की कमी का भी हम थोड़ा थोड़ा शिकार हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह पाक रहम करे हम सब पर। और आगे भी अब मजीद बहुत बेहतर चीजें भी हो रही हैं और क्लाइमेटिक चेंज इस वक्त एक जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे मसले मसाइल जो है ना वो इस वक्त जन्म ले रहे हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए भी काम का सिलसिला जारी है। बिकॉज क्लाइमेटिक चेंज इस वक्त इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। आपको पता है कि 2050 में कहा जा रहा है कि लाहौर और फैसलाबाद दुनिया के सबसे गर्म तरीन शहर होंगे, सो दैट इज ऑल्सो एन अलार्मिंग सिचुएशन। ये क्या क्या हो रहा है, अभी आपने देखा कि यूरोप में 1300 से जायद लोग मर चुके हैं गर्मी की वजह से, तो ये ना बड़ा एक थोड़ी सी सिचुएशन बड़ी डरावनी है कि हो क्या रहा है। एक जानब हम आबादी की बात करें और एक जानब आबादी खत्म हो रही है मौसम की तब्दीली से। सो अल्लाह पाक रहम करे हम सब पर। इस पर काम चल रहा है, इसका ख्याल रखा जा रहा है, ऐसी बहुत सारी जो हैं वो अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जा रही हैं, लोगों को बाखबर किया जा रहा है और मजीद आगे इस पर काम भी किया जा रहा है कि किस तरह इस गर्मी से बचा जा सके। और बात यह कि एसी लगाने से ज्यादा जो है ना वो डिफिकल्ट उसके बिल देना है, और ये सब लोग इस बारे में सोच रहे होते हैं कि बिल देना है, एसी कैसे चलाएं या क्या करें। सो इन सारी चीजें यानी कि यूटिलिटी बिल्स, सेहत और इन सबको मद्देनजर रखते हुए आगे मजीद क्या काम होंगे, इस पर काम का सिलसिला जारी है। सो Again, we are hoping for the best. और इसी के साथ साथ ट्रैक की जानिब भी चलते हैं क्योंकि भाई ट्रैक भी जरूरी है। सजाद अली की आवाज सुनाते हैं आपको, फिर वापस आते हैं और मजीद बातें भी करते हैं।

0: FM 100's time check. It's 2 p.m.
1: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और ये लो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद ये लो बाय जैस कैश।
0: लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365।
2: कुदरत का निजाम तवाजन पर कायम है।
3: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाजन बिगड़ जाता है।
2: घर के अफराद और आमदनी में तवाजन
4: हमारी जिम्मेदारी है। खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
6: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।

ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो।

0: तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
2: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
1: एक दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
3: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
4: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
5: FM 247 365 FM 247 365

0: Like us on facebook.com/FM247365.
1: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM247365. Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
4: Only music, no RJ talk.
3: This is FM 100.
5: Come on.

लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रूपए डिपॉजिट करके पाए ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: आज भी इस्तेमाल डेली लो फिट रहो।
1: नाजरीन ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
2: बंद करो ना ढक्कन।
3: स्वीप वी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
4: नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
6: अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
7: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
3: एंड स्वीप वी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
4: And Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with yogurt and egg. 100% aage badho bina ruke.
5: And
8: Toofan hai, har jeet ki pehchan hai.
9: Bain al-aqwami safar par rawana hone wale mutawajjoh hoon. Aisi online apps aur platforms se ijtinab kare jo paison ki ivaz kisi namaloom shakhs ka saman aapke apne saman ke saath le jane ke liye karte hain. यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
10: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
11: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے،
12: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
13: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
14: ہماری ذمہ داری ہے۔
15: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
10: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: FM 24/7/365 FM 24/7/365 FM 100 31 سال FM 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
10: السلام علیکم پاکستان۔

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
3: एक दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात 2500।
4: अगर आप हैं इंड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
5: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
0: This program is brought to you by
4: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
6: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा
7: एंड स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ
8: एंड लाइफबॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके
6: एंड तूफान है।
0: facebook.com/fm247365
9: back to back back to back only music no RJ talk
10: only music no RJ talk
9: this is fm 100

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, तब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ है 100% पीछे,
1: सिर्फ मेल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
4: बंद करो ना ढक्कन।
5: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
6: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन

0: control, no frost, no worries.
1: This program is brought to you by.
2: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
3: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
4: एंड स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ
0: एंड लाइफबॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके
3: एंड
5: facebook.com/fm247365 fm247365
6: back to back back to back only music no RJ talk
7: only music no RJ talk
6: this is fm 100
8: come on

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja.
1: Phoenix laga aur bhul ja. हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
2: एक दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात 2500
3: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम
4: इंट्रासिफ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
1: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
0: This program is brought to you by
3: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
0: एंड
5: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
0: एंड
6: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ
0: And
7: Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with Yogurt and Egg 100% आगे बढ़ो बिना रुके
0: And
8: तूफान है हर जीत की पहचान है
0: 100 FM
9: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya. FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM247365

0: FM 100's time check. It's 7 p.m. This program was brought to you by.
1: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
2: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
3: एंड स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
4: And Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with yogurt and egg. 100% आगे बढ़ो बिना रुके.
5: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करना कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉप सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
6: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.
7: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
8: एक दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात 2500.
1: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से जायद इनामात.
8: दुनी दो दो दुनी चार.
9: इंट्रासिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
7: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
10: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी. सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका. तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.

0: आज भी इस पे गोल, डेली लो फिट रहो.
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय तूफान है ये, हर जीत की पहचान है ये.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
4: FM 100 like us on facebook.com/FM247365.
5: FM 247365.
6: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
2: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम।
3: इंट्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: डेली लो, फिट रहो।
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
7: तूफान है।
8: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जरायम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
10: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो, तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत।
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
11: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे न लगाएं।
7: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वॉक नहीं करता।
12: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
11: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
7: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम हुई।
12: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
11: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
12: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाएं,
7: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें
11: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
7: आइए वेट से आगे का सोचें।
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
13: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम ज़राए इब्लाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाज़मीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसमवेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई? महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। PTA.txt महफूज है, लेकिन PTA.txt.exe नुकसानदेह साबित हो सकती है। अटैचमेंट खोलने से पहले जरूर स्कैन करें। ईमेल इस्तेमाल करने के बाद हमेशा लॉग आउट या साइन आउट करें। इन खतरनाक आदतों से हमेशा बचें। सरकारी ईमेल को जाती या गैर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल न करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले असल URL जरूर चेक करें। क्लिक करने से पहले एक बार जरूर देखें। अपना ईमेल पासवर्ड किसी के साथ हरगिज शेयर न करें। पासवर्ड, OTP या हसास मालूमात ईमेल के जरिए कभी भी न भेजें। हैकर्स अक्सर फौरी कार्रवाई, धमकी, लालच या झूठे वार्निंग साइंस जरूर देते हैं, ताकि आप घबराकर फौरन क्लिक कर दें। अगर कोई ईमेल बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा पुरकशिश और गैर मामूली तौर पर मशकूक लगे तो एक बार जरूर रुक जाएं और इसकी तस्दीक करें। फिशिंग ईमेल से कैसे बचें? अपने आप को और अपने अदारे को महफूज रखने के लिए धमकी आमेज या जज्बाती जुबान वाली ईमेल से मोहतात रहें। नामालूम या शॉर्ट लिंक्स पर हरगिज क्लिक ना करें। भेजने वाले का मुकम्मल ईमेल एड्रेस जरूर चेक करें। अटैचमेंट से खासतौर पर मोहतात रहें, खुसूसन exe.bat.vbs.msi और दीगर एग्जीक्यूटिवल फाइल से लोगो और ग्राफिक्स आसानी से जाली बनाए जा सकते हैं। इन पर अंधा एतमाद ना करें। किसी भी मशकूक ईमेल की फौरन अपने अदारे की IT टीम को इत्तला करें। आपकी होशियारी ही पहली दिफाई लाइन है। होशियार रहें, महफूज रहें। ये पैगाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।
14: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।

0: FM 100's time check. It's 8 p.m. This program was brought to you by
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
0: 100 FM.
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश.
0: FM 100 like us on facebook.com/fm247365 FM 247365. FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
3: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.

0: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
1: मंशियात, एक लम्हे की गलती पूरी जिंदगी की तबाही। आइस, हेरोइन, चर्स या किसी भी किस्म की मंशियात, ये वक्ती खुशी नहीं, मुस्तकिल अजियत है। ये जिस्म को कमजोर करती हैं, जहन को मफलूज करती हैं और ख्वाबों को तोड़ देती हैं। एक आदत एक खानदान की खुशियां छीन लेती है। इंसदादे मंशियात फोर्स का पैगाम, मंशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ हमारा अज़्म मजबूत है। आइए अहद करें, अपने नौजवानों को बचाएं, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। 26 जून आलमी दिन बराए इंसदादे मंशियात।

खर्चे। टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
4: This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجئے، ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے۔ Traffic قوانین کی پابندی کیجئے۔

0: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
1: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी NGO वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: Us on facebook.com/FM247365

टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।

0: पीछे पीछे।
1: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
2: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
3: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
2: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
3: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
4: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
5: लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
6: back to back only music, no RJ talk.
7: Only music, no RJ talk.
6: This is FM 100.
8: Come on.

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
0: 100 FM।
3: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
4: 23 से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो, तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है, लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा, ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस फाल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जय सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीजिए।
7: ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
0: Like us on facebook.com/fm247365. FM247365.
8: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
9: Only music, no RJ talk.
8: This is FM 100.
10: Come on.

0: FM 100's time check. It's 10 p.m.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
2: 100 FM।
3: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
0: FM 100। 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
4: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।

0: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
1: क्या कम उम्र बच्चियों से मशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की? उन पर काम का बोझ ना डालें, उनसे उनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। बच्चों से मशक्कत लेना एक काबिले सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मशक्कत से इनकार करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: Back to back, only music, no RJ talk.
4: Only music, no RJ talk.
3: This is FM 100.
5: Come on.

टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मेल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
4: FM 24/7/365

0: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
1: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कूट इसका नौजवान तबका है। पाकिस्तान की 60% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरिद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी मईशत की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। अहम उनके खिलाफ एक खामोश जंग जारी है और वो है मुनशियात का बेदरेक इस्तेमाल। मुनशियात फरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां वार है। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ है, जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गुमराह कर रहे हैं। यही वो मकाम है जहां इंसदाद मुनशियात फोर्स ANL वाजे मकसद और मजबूत इरादे के साथ मैदान में सरगर्म नजर आती है, ताकि हमारे नौजवानों की हिफाजत और उनको बाइख्तियार बनाया जा सके। ANF ये जंग मुसलसल लड़ रही है, मोहल्लों में, सड़कों पर।

0: सेमिनार से लेकर तलबा तक कसाई के प्रोग्रामों तक के एन एफ एट मिशन पर मुनशियात को न कहीं जिंदगी को हाँ कहें। आइए इस खतरे के खिलाफ मुतहिद हों। नशे से पाक नौजवान एक मजबूत मालियाती पाकिस्तान है। एएनएफ का साथ दें, मुस्तकबिल बचाएं, कौम को मजबूत करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: Like us on facebook.com/fm247365

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब पाला से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: facebook.com/fm247365

तो प्यार में बोल बोल से ही सुख घटते दस हजार मिलन कभी टकरी तोल से ही तेरी हस्ती अखरी पुछ जावे कभी सानू अंदरों बोल से ही।

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीम या खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100.